नमस्ते सीताराम अस्सलाम वालेकुम स्वागतम सबकोई वेलकम टू द बॉलीवुड मिक्स विद मी समारू आई बी हियर फॉर द नेक्स्ट थ्री आवर्स ऑर सो प्लेइंग फॉर यू द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक

0: They said the next movie to this one, Pushpa. This one could be Pushpa 2, The Rule, The Rise. And this one is done by Latika Sablashi.
1: आगे ना सब पार्टी में
0: देवी श्री प्रसाद एंड कार्तिक एंड द सॉन्ग इज